भक्ता करके जुग कोट गणेश के हाथ लख हूँ, जुग कोट गणेश के हाथ लख हूँ, काट पा

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहेगुरु। अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत।

0: दूत नाए तेरे छड़ जाए, पूर्ण गुरु दी पहुंच लोक परलोक विच है। जिवें शहनशाह मेरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अकाल तख्त साहिब दीवान विखे सशोभित हन, आओ बनाओ बिरती दियां अखां, करो उस पवित्र स्थान दे दर्शन जिथों दी चरण धूड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवते बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया अवतार जिथों दी चरण धूड़ी नूं लोचदे हन, साहिब जी सशोभित हन, गुरु के कीर्तन हो रहे हन, रब्बी अमृत बरस रहा है, दूरों दूरों संगतां आके ऐं समाधि लाई बैठियां हन, कीर्तन विच झूम रहियां हन, जिवें पिपल दे पत्ते दी न्याई, जिवें पिपल दा पत्ता हवा रुमक रही होवे तां झूमदा है, तिवें गुरु के सिख अमृत बरस रहा है कीर्तन दा, ते फिर ए रस पुंज रहे हन, जुड़े हुए हन निरंकार दे चरणां। कीर्तन दी समाप्ति हुई, एक सिख आ पुजा जो हजूर दे चरणा विच आके बड़े सुंदर दो दुशाले लिया के अगे रखे, गरीब नवाज आप दी बड़ी कृपा हुई है, बड़ी मेहर हुई है, ए दुशाले मैं आप दी भेटा कर सकिया, कुछ समा पहले ही आप जी दे चरणा विच दर्शना लई पहुंचना सी, इदे नाल दे मैं दो दुशाले ले सन, पर जदों मैं आ रहा सां आप जी दे वल तां रस्ते विच पठाना ने घेर लिया, मेरे कोलों ए पट्टी दे पठान दो दुशाले खो के लै गए, नाले मैनू धमकियां भी देंदे रहे, नाले दुशाले भी लै गए, मैं आप जी दे वल आ रहा सां, पर फिर मन विच ख्याल आया कि गुरु दरबार विच खाली हथ किवें चला जावां, तो फिर मैं वापस कर गया, घर जाके फिर दुशाले तैयार करवाए हन गरीब निवाज, ते जंगलां विचों राती प्रभाती रस्ता कटदा होया आप दी कृपा दा सदका मैं इथे पहुंचया हां, ये आप दी कृपा है गरीब निवाज, जे कदे ओ भी तुहाडे चरणां विच पहुंच जांदे तां बड़ी कृपा हुंदी। धन गुरु हरगोबिंद साहिब मेरी पीरी दे मालिक भाई बिधी चंद नूं बुलाया, भाई बिधी चंद जी सच्चे पातशाह जा भाई, पट्टी दे पठाना ने दो दुशाले खोले हन सिख कोलों, ते तू जाके लै के आ, महाराज तुहाडी कृपा होवे तुहाडी मेहर दा हथ जे सिर ते होवे ते केड़ी वड्डी गल है, आप दी पहुंचता सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाए, आप की नहीं करवा सकते, आप मेर दा हाथ रखो ते फिर केड़ी वड्डी गल है, भाई बिधी चंद सत बचन कह के पट्टी वल तुर पिया, रस्ते विच मुसलमानी लिबास दे कपड़े बनवाए जिवें मुसलमानियां पहनदियां हन, उसे तरह दे कपड़े पा के अखां तक सिर्फ अखां खाली रहन दितियां, बाकी सारा बुरका चढ़ा लिया, ते किरपान अपने पास रख ली, ते गुरु दी किरपा नाल जा पहुंचिया पट्टी विच, ते सीधा ही फिर महलां विच चला गया, जहां प्रवेश कीता अगे पटराणी अते होर राणियां बैठियां हन, ते जाके तलवार कढ ली, भाई जेड़े दो दुशाले नवे आए हन वो किथे हन, छेती लियाओ इत्थे, छेती नाल भज के गए, दुशाले ले आंदे भाई बिधी चंद नूं दे दिते, भाई बिधी चंद अपना रस्ता पकड़िया, पर इतने तक उन्होंने रौला पा दिता, जो रौला पाया तां फिर चारे दरवाजे बंद हो गए, उच्चारण करो श्री। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਹਨ। ਆਪਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਲਦਾ ਪੱਠਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
0: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ?

इस तरह मन करके गुरु दे चरणा विच जुड़ के अरदास कर रहा है भाई विधि चंद ते पट्ठे विच वड़ गया। मन जुड़ गया गुरु हरगोबिंद साहब जी दे चरणा दा ध्यान धरिया होया ते अरदास कर रहा है राख पिता राख पिता। इधर धन गुरु हरगोबिंद साहब अकाल तख्त की पवित्र धरती ते आप भाग ला रहे हैं जुड़े बैठे हैं ते अचानक संगतां नूं हुकम कीता जाओ सरोवर विचों जल भर के साडे उपर पा। गुरु का हुकम मन के सारियां संगतां वाहो दाई दौड़ियां। पता नहीं गुरु ने की बहाना वरताया इतना जल पवाया अपने उपर के सारा जल जल हो गया। इधर अकाल पुरख वाहेगुरु दा की कौतक वरतिया भाई विधि चंद जदों पठे विच वड़िया ना उसे वेले बदली आई ते मोले तार मी वसन लग गया। जां मी वसिया पठा ठंडा पै गया। धन गुरु हरगोबिंद साहब धन गुरु हरगोबिंद साहब आप दा बचन तीन काल सत है कि जेड़ा महापुरुष जेड़ा सतगुरु इथे नहीं रखिया कर सकदा दरगाह विच की करे। हुण बदली होण करके दिन भी छेती छिप गया हनेरा पैण लगा ते हनेरे दा फायदा उठा के पाई विधि चंद छाश ग्रास सिमरन करदा होया गुरु हरगोबिंद साहब जी दे चरणा विच आ पहुंचिया अमृतसर। मथा टेक के दोवें दुशाले अगे रखे हजूर दे गरीब नवाज तेरी कृपा ना होंदी ता ए कारज नहीं सी हो सकदा ए तेरी बख्शिश होई है। हुण संगतां हैरान हन कोई अज कौतक की वरत्या किसे दा पुछण ते हिया नहीं पैंदा कोई जुरत नहीं करता जो सतगुरां दे चरणा विच अरदास करे पुछे कि ए की कौतक वरते है। भाई विधि चंद जिदे उपर गुरु हरगोबिंद साहब दी मेहर होई सी नदर होई सी जा दुशाले रख के मथा टेकिया नैना दे जल नाल हजूर दे चरण धो दिते ते की तकिया चरणा नूं तां छाले पए होए हन। गरीब निवाज ए ओ चरण तां नहीं जो मैं अपनियां अखां विच अपने हिरदे विच वसाई बैठा। विधि चंद ए तेरी कृपा होई है भाई। महाराज मेरी कृपा आख्या तूं पट्ठे विच वड़ गयो ते साडे चरण तूं हिरदे विच वसाए होए सन ते ओ शेख सानू पहुंचदा रहा तेनू नहीं पहुंचा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। अवेख संगता ने कितना पानी साडे उपर पाया पर फिर भी साडा सारा शरीर शालकियां दे नाल भर गया क्योंकि जिथे शेख होवे उपर पानी पा दईए तो शाले पै जांदे हन। धन हन सतगुरु जिन्हां ने साडे लई इतना कष्ट उठाया। भाई विधि चंद नैणा तो जल नहीं रुकदा ओ मेरा दे साईं आप किडियां मेरा करदे हो ताती वाव ना लगी अपने सेवकां नूं किवें तुसी बचाउंदे हो पौजलां तों किवें रख्या करदे हो ताती वाव ना लगी पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। जदों सारी संगत ने ए विद्या सुनी तां फिर मानो हरमंदर साहब दा श्री अमृतसर साहब दा कण कण ए पुकार उठिया धन गुरु हरगोबिंद साहब धन गुरु हरगोबिंद साहब धन गुरु हरगोबिंद साहब लोक परलोक दे मालक हो आप धन हो गरीब नवाज साडे ते भी कृपा करो। जिस तरह विधि चंद नूं बलदे पट्ठे विचों बचाया जे सानू भी कल युग दे तत्तियां चोलियां तो हाथ दे के बचा लो। राख पिता प्रभु मेरे मोहे निर्गुण क्योंकि असी भी रोम रोम गुनाहगार हां भुलन हार हां
आप सरबग हो असी अलपग जीव हां मुड़ मुड़ भुल जांदे हां इस लई साडी बांह फड़ी रखनी।

कुछ निंदा चुगली करने वाले भी खड़े, बादशाह के दरबारी भी खड़े। कबीर साहब जा पहुंचे, बादशाह ने देखे और बादशाह को

जे लोड़े सदा सुख भाई, साधु संगत गुरे बताई। निशानी की है, नकली भी बड़े हैं। निशानी की साधु की।

संगत रहो, जौ की भूसी खाओ। जौ दी तोड़ी थोड़ा कम कटदा, कट जे गरीबी कट ले, जौ दी तोड़ी खा के गुजारा कर ले, पर नाम जपण वाले दी संगत ना छड। कबीर साधु की संगत रहो।

नानक कसम ले जाए कसम ले जाए हर गां नानक कसम ले जाए रवन रवन रवन रवन मरी गए।

नानक तू लेना तू है गुर अमर तू बिचारिया गुर डिठा तमन सादार रामदास सर पनदास

आस को आस जगत गुरु की पार्स पेट पर्श करो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुर सिर हत्तरे ओ कसमल जाय हर हनन कसमल जा हर हनन।

गुरु अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत अग्नि देखत गत चरण कमल दास चरण कमल दास सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न गुरु जोग तख्त दियन गुरु रामदास नाये रामदास सरी नाये रामदास नाये रामदास सरी दस सरी दस दस नाये रामदास सरी नाये रामदास सरी हम

रघुवंश रघुवंश तिलक दशरथ कारे मन बाछे ताकी शरणं। रघुवंश तिलक दशरथ कारे मन बाछे ताकी शरणं। सतगुर सेव अलखगत जाकी।

नाइये रामदास सर जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटाजू देख कियो फिरत अदास को सितन सतगुर सुख पयो।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है वो मेरा, जो पिंड सब तिसका सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

तो तुम पे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा

सदन दूजा और न कोई सतीरा खेल अखाड़ा जियो सदन दूजा और न कोई सतीरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना सब प्रभ जी पास सबके चौकीता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जी दे वड्याई ता तेरी वड्याई।

बाहिर तेरा प्रवक्ता, तू जन के है संग, कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने, नाम जपो हर रंग।

जो तो करे करावे स्वामी हा मसलत परवा चरण सर्व हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत नारायण तन पाल साखी।

मैं दू दिन ठहर जिस पर हम जाएंगे तो तुम ते लेना तू मेरा देना जो तू दे सोई सुख सहना जो तू दे सोई सुख सहना हर आपे हुए कृपाल आप ही लाएंगे।

मध्यन होत साधु तुरे आवर जानो रे चित पाई जन्म मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दा गुरु गुर सच्चा सिद्धन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन्मान सब बनिहार हर गुण गाओ साफ सफाई हर गुण गाओ

पुरुष शब्द शर्म को जी भरतनारद संपदा दुर्वसा के परिणाम वाणी गुरबाणी लागे तिन हस्ते